हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

वाहिगुरु दी एही रजा है, मैनू परवान है। जिस हाल विच मेरा मालक खुश रहे, मैं ते ओही ओ कम करना है। जे उसकी रजा है तवी दे उत्ते मैं बैठा, अग दे उत्ते मैं बैठा, मैनू परवान है। हजूर ने चौंकड़ा ला लिया और चौंकड़ा लाने की देर सी, चंदू ने हुक्म किया जलाद नू, कोल ही एक कड़ाहे दे विच रेत गर्म की जा रही सी। जदों ओ रेत गर्म हो गई, हुक्म किया चंदू ने जलाद नू, इस रेत दे कड़छे भर भर के गुरु अर्जन देव दे सिर विच पा दे। थल्यों भी अग है, चारे पासे अग है, जालम उत्तों होर कहर कमा रहे है। हुक्म कीता रेत दे कड़छे भर भर के सिर विच पाओ, जालम ने रेत दे कड़छे भर भर के गुरु अर्जन देव दे उस पवित्र शीश उत्ते पौने शुरू कर दिते, जिस मुबारक शीश ते चवर चुलिया करता सी। अज उत्थे गरम रेत दे कड़छे भर भर के पाए जा रहे ने, पर इस हाल विच भी अपने उस मालिक दे शुकराने विच आनंदित हो रहे ने।

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत, ओ सरोवर, ओ सोमा हृदय

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

Da ba da ba ma ba ga ma ga da da da ma ga.

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदा वर्तारा वरदा है किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते ये हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया पे ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जंदी है। साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ते आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ये उत्तम है ये प्रमाणिक है ये ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना देवे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है ते राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझदा वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है की आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चित दा करदा नहीं पर बद्दे रुद्दे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे ने। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी विहाज लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरा मन तन हरिया तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस

0: प्यार है, ए बेनती भी ओई कर सकते हैं। बिरहां बिरहां आखिए बिरहां तू सुल्तान, जिस तन बिरहां ना उपजे सो तन जान मसान। जिस दे हिरदे विच प्रभु दे मिलन दा प्यार नहीं, गुरु दे चरना दा प्यार नहीं, गुरु दे दर्शना दा प्यार नहीं, ओ भी कोई हिरदा है? साहब जी कहंदे न ओ हिरदा नहीं है, ओ तां इक शमशान है। गुरु के सिख दा हिरदा जिदे विच हर वेले गुरु का रूप वसिया होया, आ गुरु का सिख जो जंगलां विच रहिंदा है, चुगी पा के कोई लंघे मुसाफिर आए गए नू पानी पिलाउंदा। एक दिन एक डोला जा रहा है जिदे विच व्याई हुई लड़की बैठी, तां डाकू पै गए डोला लुटन लगे, आ धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सिंह सूरमा। सारे डोला छड के भज गए, डाकू लुटन लगे, तां इन्हें कल्या सारिया नाल मुकाबला कीता, डोले नू भी लुटन तो बचा लिया। ते लड़की नू भी अमन अमान लैके शहर विच पहुंच गया, लेकिन सारे शरीर ते जख्मां दे निशान हो गए, थां थां ते काओ पए हन। ते रस्ते विच आके डिग पिया, ते मुंह विचों कहिंदा है इक घुट पानी, इक घुट पानी। इथों लंघ रहे हन सोयना ते मोयना, जो वैष्णो मत दे दंपति हैं। सोयना मोयना आ वैष्णो मत दे दंपति उथो लंघ रहे सन, क्योंकि इन्हों का नेम सी रोज अमृत वेले उठ के पहला आप इशनान करना, ते फिर गागर लैके नदी ते जाना, उथो जल दी भर के लियाना, ठाकुर नू इशनान कराना। आज जदों नदी तो जल दी गागर भर के लिया रहे, ते कन्ना विच आवाज कही पई इक घुट पानी, इक घुट पानी। की वेख्या कोई जख्मी हालत विच आ तड़प रहा है, ते मुख विचों कहिंदा है पानी। साडे कोल पानी है, ए पानी मंग रहा है, तां ही मन विच आया ए तां पूजा दा पानी है, ठाकुर नू इशनान कराउण दा पानी है। जे इस नू पिला दिता तां झूठा हो जाएगा। सात संगत बोलो श्री आख्या, तू भाई कुछ देर ठहर, असी ठाकुर नू इशनान करा आईए, फिर आके तेनू पानी पिलाउंदे हां। गुरु का सिख कहण लगा एक पासे तां ठाकुर नाल एडा प्यार करना, ते दूसरे पासे उदे बनाए होए बंदियां नू पानी तक ना देना। ओ लंघ गए अगे पानी ना पिलाया, तां सिख ने जौंदियां ए मुंह चों बचन आखे, एक पासे रब नाल एडा प्यार ठाकुर नू इशनान कराउणा, दूसरे पासे घुट पानी दा ना पिलाउणा, जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। सात संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु,
0: जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आए ठाकुर नू इशनान कराया, पूजा विच जुड़े, वीणा चुक के कीर्तन आरंभ करन लगे, लेकिन अज पूजा विच मन नहीं लगदा, बार बार आवाज आउंदी है जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। ओ सिख याद आया, पानी लै के जदों उस थां ते पहुंचे भीड़ लगी हुई, ओ जिहड़ा सिख सी तद तक ओ प्राण त्याग चुका सी। सात संगत बोलो श्री प्राण छड गया। सारे खड़ोते यही कह रहे सन ए धन गुरु गोबिंद सिंह दा सिख सी, जिसने डोला लुटन तो बचाया, ते दूजियां दी खातर अपनी जान दे दित्ती, ते आ बेचारा घुट पानी दा मंगदा चला गया, किसे ने पानी मुंह विच ना पाया। तां इन्हां दोनों दे कन्नां विच आवाज पई जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਉਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਲਾਏ, ਬਾਉਲੀਆਂ ਪੁਟਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਤ ਪਾਈ ਸੋਇਨਾ ਮੋਇਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁੱਕਾਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜੀਏ।

ताई किसे ने आके आख्या सोइना मोइना तुसी इत्थे क्यों खड़ोते हो। आख्या इत्थों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लंघना है, सवेरे दी शाम हो गई असी खड़ोते हाँ। ता गुरु के सिख ने आख्या आके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दूसरे रस्ते तो आके नगर विचों तां होके भी चले गए। ताई कन्ना विच फिर आवाज गूंजी, जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। साथ संगत बोलो श्री घर आए ना नींद पौंदी है ना चैन आउंदा है, की करिए। किसे गुरु के सिख ने स्रोत पाई, जे अपने गुनाह बख्शाउणे ने ना ता आनंदपुर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणा विच जा। दोनों तुर पे आनंदपुर साहिब वाल बेनती करदे होए ए

दरबार विच बैठे साईं मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साईं मियां मीर, समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हन, जो अखर उचारे हन, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू, जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है। ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने कहा, अच्छा। जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज, इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन। जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए, बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं, किसे जरूरी काम नूं चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां, चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तां गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा, संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है तले, ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना तां ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवें है तां तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तां गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नूं सदिया जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। सात संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। तां हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ कि जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाएं। तां आ वेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से, अंदर परमेश्वर दा नाम वसया, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु, आ शरीर नु क्या दुख देवेगा। ए चंदू साई मियां मीर जिसने हरमंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनू हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है,
ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

गुरु मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जुन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्होंने बुलाओ। वो प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नू प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नू आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणे विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाया। ते जप जी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जप जी साहब का भोग पाया जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले केती छिट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ये आवाज गुरु अर्जन देव की आ रही।

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुनिया जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जांदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

बेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरगामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक।

क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है और तू शूरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ, सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं, सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना, मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैन देन करता रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा

महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे दा काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहिगुरू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जू है, सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है। ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, ये हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, ये हाथ बज गए, ये हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हाथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आं, मत्था टेकने आं पातशाह, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने की बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकागर करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है, शुकर करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी। कार्ज आया रासे, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे, उसले कार्जां च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा है। एक गल वखरी है कि अरदास करन वाला बंदा कार्ज दी संपूर्णता तो बाद ये नहीं कहिंदा मैं कम नबेड़ दिया, बल्कि

करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसे छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईये जीयड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक,

जिसका सब सुविसाह जिदा सारिया नू विश्वास है जिदे ते विश्वास कीता जा सकता है विसाह कीता जा सकता है जिदी समर्था थोड़ी होवे शक्ति थोड़ी होवे ओदे ते काम छड़ के कई बार विश्वसा बनया रहेगा डर बनया रहेगा तौखला बनया रहेगा। वाहिगुरु ते भरोसा करने वाले नू विश्वास बजदा है विश्वसा नहीं रहिंदा खतरा ते तौखला नहीं रहिंदा। दृढ़ विश्वास वाले बंदे जिसले उत्ते भरोसा करते ने फिर इस तरह करते ने कि सब सियाणपां छड़ के गुर की चरणी पाह फिर अपनी सियाणप की गल नहीं करते। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाम सुख तैनू देवेगा सहज तेरा बनिया रहेगा तू केवल ओदे नाम विच जुट जा ओदी भगती च जुट जा। आठ पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ तू ओदे गुण गाउणा शुरू कर तू अठे पैर ओदे ध्यान च रहना शुरू कर ओ तैनू अपने ध्यान च रखेगा। तिसकी शरणी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोए किसे छोटे मोटे दी शरण पैण दी की लोड़ है तू ओदी शरण पाओ जिदे जिड़ा होर कोई नहीं है जिदे वर्गी समर्था किसे होर कोल नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घणा जिनू याद करन नाल बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति हो वाधू सुख की प्राप्ति हो। दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी तू ओदी सेवा च लग प्रभ साहिब सच्चा सोए जो सच्चा मालिक है। साध संगत होए निर्मला सतसंगियां नाल रल के पवित्र होके निर्मल होके मलीन बुद्धि नू छड़ के दुरमत नू छड़ के गुरमत दा धारनी बन के कटिए जम की फास सुख दाता भय भजनो तिस आगे कर अरदास फिर तेरी अरदास करन दी ढिल है ते ओदी रहमत करन च कोई ढिल नहीं। किसने ओ रहमत करेगा मेहर करे जिस मेहरवान ता कार्ज आवे रास जीवन दे सारे कार्ज सौर दे चले।

काश हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छोह प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरत के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

ओ मारा सतगुरबान। गुरु रामदास साहिब कहंदे ने मेरे मन मुख हर हर हर

रावण हर भक्ति

پس کے از صحبت بزرگان شد جزم چشم مغیر چشم مغیر از مال شبانه

तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ओसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सै जुगाद विच भी सच सै हुण भी सच है।